ठग के चला गया ना तो कहता है, अरे जाओ जाओ ऊपर बैठा सब जानता है, वो सब देख रहा है। और जब अपने किसी को ठगता है तो भूल जाता है कि ऊपर बैठा ये भी देख रहा है। कितना भी छिपा लीजिए, साधक कहता है।

बात है ना, मैं अच्छा हूँ ये स्वाभिमान है, अब मैं ही अच्छा हूँ ये अभिमान है, बचा जा।

जब काम को हम करने लगते हैं तो बनने वाला काम भी बिगड़ जाता है। सूत्र, काम करने से पहले ही भगवान के हाथ में सौंप दीजिए। आपन तेज संभारो आप है। भगवान आप जानो कैसे होगा, ये कथा हम नहीं जानते, आप संभालो। द्रौपदी कन्हैया पे नाराज हो गई, भगवान हो, भाई हो, भगवान हो तुम, तुम्हारे रहते मेरे पति हार गए और तुम देख

तेरे पांचों के पांचों पति बैठे हैं यहाँ पर, पूछ पूछ इनसे, क्या खेलने से पहले किसी ने मुझे याद किया था क्या? पांचों बैठे हैं, पूछो। दुर्योधन ने कहा कि मेरी ओर से पासा हमारा मामा शकुनी फेंकेगा, तो तुम्हारे पांचों पति में से एक भी तो बोल सकता था कि तुम्हारी ओर से यदि शकुनी फेंकेगा तो हमारी ओर से हमारा कन्हैया फेंकेगा। मैं फेंकता पासा, फिर देखता कौन जीतता है और कौन हारता है। लेकिन इन्होंने मुझे याद नहीं किया। कथा कहती है काम शुरू करने से पहले सौंप दो। प्रभु आप ही जानते हो कैसे पूरा होगा, जो जो कराओगे हम करेंगे, हम कुछ नहीं जानते। साधक

बार बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ कार्यक्रम ज्ञानोदय। यस कार्यक्रमका प्रायोजक श्रेष्ठ टेलरिङ सेन्टर बाग बजार र चारवहिल। कार्यक्रम भजन दीपाञ्जलि प्रत्येक सोमबार सुमधुर भजन का साथ में बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz में। यस कार्यक्रम का प्रायोजक उच्च स्तरीय प्रविधि द्वारा स्वदेशमै निर्मित चाँदी का हर एक प्रकार का सामग्री का लागि प्रसिद्ध सिल्वर स्टेट धर्मपथ न्यू रोड काठमाडौँ। कार्यक्रम भजनांजलि प्रत्येक मंगलवार बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म अवश्य सुन्नुहोला केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz में।

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: श्री इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड यहाँ को विश्वासिलो र भरपर्दो वित्तीय सहयात्री। हाम्रा विशेषताहरू निक्षेपमा आकर्षक ब्याज दर सरल र सहज तरिकाले कर्जा प्रवाह देशै भरि रहेका शाखाहरूबाट निशुल्क एबीबीएस कारोबार सुविधा सी आसबा सुविधा कारोबारको जानकारी दिन एसएमएस अलर्ट सुविधा निशुल्क चेक बुक तथा सम्पूर्ण रेमिटेन्स सेवा। केन्द्रीय कार्यालय श्री इन्भेस्टमेन्ट एन्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड दिल्ली बजार गुर्जुको चौक काठमाडौँ।
2: टुगेदर वी डेलिभर।
1: अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

ना किसी वस्तु से करना चाहते हैं। अन्य कोई कवि होता तो कह देता भगवान राम के मुख जैसा कमल है या चंद्रमा है या सूर्य है, किसी भी तेज वस्तु से या सुंदर वस्तु से तुलना कर देता। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी को कोई ऐसी वस्तु नजर ही नहीं आ रही जिससे वो भगवान राम के मुख की तुलना करें। बहुत सोचा और अंत में हार कर यही कह दिया कि भगवान राम के मुख जैसा केवल भगवान राम का ही मुख है और कुछ नहीं।

अरे गदकू, ओ पांड्या, अरे ओ धोंडिया, अजी गधव प्रसाद अमा छनमिया, अरे ओ बिच्छू महाराज, ओए बड़बड़ सिंह तने किधर पधारो और सुनो मेरी कथा जिसमें भरी है भीषण व्यथा। ई गलियन का धर्म अलग है, अलग है रीत रिवाज, का समझे ना समझे तो समझ लो हमसे।

Chan chan chanan chanan nit. Khan khan khanan khanan. Chan chan chanan chanan khanan khanan. Natkat chori banke chakori. Chanchal gori kar dil ki chori. Kabhi lachak lachak kar, kabhi chamak chamak kar, kabhi jhatak jhatak kar, kabhi matak matak kar. कभी लटकाओ लटकाओ, कभी झटकाओ झटकाओ, कभी ठुमकाओ ठुमकाओ, कभी मटकाओ मटकाओ, लचक लचक, चमक चमक, झटक झटक, मटक मटक, पलट तेरा ध्यान किधर है भाई।

जमादार पकड़ लो इन बंदरों को और सुनो सुनो इन घोंचू पाखंडियों की कार्यक्रम। अरे वड़की जिनको सुनकर टूट जाएंगे तुम्हारे सारे भरम।

0: उत्कृष्ट स्थान।
1: क्याप्टेन रेग्मीज फार्म हाउस, कमतानको बगैंचा, बेलकोटगढी, मदानपुर 12, देउराली।
0: सम्पर्क नम्बर
1: 9841470164,
0: 9832454,
1: 9295827।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैं भरि।
1: चौबीस क्यारेट भनेपछि 24 क्यारेट नै हुने, फिर्ता गर्दाखेरि

0: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
1: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

0: गोल्ड पैलेस सुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: रेडी मेड या शूटिंग शर्टेज मलाई ट्रैक शूट चाहिए
2: वो मलाई फ्रॉक
3: मलाई पनी सूट
4: वो
5: अनि मलाई

0: ಸಾಮುವೆಲ್ ಚುಚ್ಚೆ ಪಾಠ.
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने.

करते हैं परसों दुआ, तब पहाड़ों की कली खिलती है। तुम तो आई हो कहीं जन्नत से, ऐसी महबूबा जमाने में कहाँ मिलती है।

0: 104.8 मेगाहर्जमा अहिले मनोरञ्जन लिँदै हुनुहुन्छ केही सदाबहार हिन्दी फिल्मी गीतहरूबाट।
1: सुखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब। होगा यूं नशा जो तैयार, हाँ होगा यूं।

6 बजे। अब एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ज को संध्याकालीन प्रसारण प्रारम्भ हुन्छ। एफएम अध्यात्म ज्योति प्रस्तुत गर्दछ संध्याकालीन सेवामा शुभ संध्या।

0: एफएम अध्यात्म ज्योति को संध्या कालीन प्रस्तुति शुभ संध्या में रास संध्या
1: चलो मन श्री वृंदावन धाम चलो रे मन श्री वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज विहार।

तो कौन कौन है जो ये दृश्य आंखों के सामने ला रहा है? एक बार सोचिए, आप सबके पैर अपने आप नहीं उठे तो मेरा नाम बदल देना कि बस रास्ते से जा रहे और सामने से कोई काली कमली पहन कर आ रहा है।

0: और गोपियां कहती हैं, मैंने चोरी से इसे मटकी उठाते देखा,
1: मैंने चोरी से इसे मटकी उठाते देखा,
0: मैंने चोरी से इसे मटकी उठाते देखा,
1: मैंने चोरी से इसे मटकी उठाते देखा,
0: आप खाते हुए औरों को खिलाते देखा,
1: आप खाते हुए औरों को खिलाते देखा,
0: नाच कर कूद कर कुछ नीचे गिराते देखा,
1: कुछ नीचे गिराते देखा,
0: माल चोरी का इसे खूब लुटाते देखा,
1: चोरी का इसे

यशोदा मैया कहती है कि जब चोरी करता है तब पकड़ कर क्यों नहीं लाती, ऐसा क्यों होता है कि हमेशा यही पहले घर पहुंचता है बाद में तुम आती हो? तुम्हारे घर चोरी करने आता है या तुम्हें परेशान करता है तभी हाथ पकड़ कर लाया करो? तो गोपियां कहती है कैसे लेकर आए?

0: चोरी करके भी सदा बेकसूर रहता है,
1: चोरी करके भी सदा बेकसूर रहता है,
0: सर पे शैतानी का इसके फितूर रहता है,
1: सर पे शैतानी।

कि कितनी बार तो मैंने देखा है कि तुम ही से माखन खिलाती हो, और अगर तुम ही प्रेम से माखन खिला रही हो तो ये तुम्हारे यहाँ चोरी क्यों करेगा। गोपियाँ कहती है हमें जबरदस्ती खिलाना पड़ता है, मजबूरी है। क्यों?

0: गोपियाँ कहती अब तो हम जा रही हैं यहाँ से, हमें पता है आप तो कुछ मानने वाले हो नहीं, लेकिन अब अंतिम बार हम चेतावनी दे रहे हैं। हम हर बार आपसे आकर कहते अगली बार फिर हम ही दंड दे देंगे। गोपियाँ कहती है इसे समझाते यशोदा ये तेरा बेटा है,
1: इसे समझाते यशोदा ये तेरा बेटा है,
0: इसे समझाते यशोदा।

चोरी सब करते हैं, ये तो तुरंत निकल जाता है, बाकी बेचारे पकड़े जाते हैं और मार

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

जाए, पर मन ही तो नहीं लगता। मन की तो दिक्कत है, हर कोई यही शिकायत लेके आते, पूजा करने तो बैठते हैं पर मन भटक जाता है, ज्यादा देर तक मन लगता नहीं। तो भक्त कहता है भगवान से,

ये शब्द कहने में लोग बहुत सकुचाते हैं, हिचकिचाते हैं कि हम अपने आप को ऐसे क्यों बोले। लेकिन याद रखना, आइए आप इधर देखिए, तो यहां पर ये शब्द कहने में बहुत लोग हिचकिचाते हैं, ये सोचकर कि हम अपने आप को ऐसा क्यों बोले। लेकिन याद रखना, जो इस दरबार में दीन बन गया वो पूरी दुनिया में सेठ है, और जो यहां सेठ बनने की कोशिश करता है तो यहां तो एक ही सेठ है भाई। तो इसीलिए ये शब्द कहने में हिचकिचाना मत। भक्त कहता है

अब देखिए, कल भी मैंने कहा था कि दुनिया में इतना तो काबिल कोई है नहीं कि बोले हम हैं इतने काबिल कि भगवान कृपा कर रहे हैं। भक्त कहता हम जानते हम काबिल नहीं है, हम जानते हैं हम गलत काम करते, हम जानते हैं हम इधर उधर भटक भी जाते हैं कभी कभी, लेकिन फिर भी है तो आपके। तो भक्त कहे

में कई लोग हैं जिनके आश्रय बहुत होंगे कि भाई ये हमारा मदद करने वाला है, ये मेरा साथी है या ये मेरा वो है। पर सच्चे भक्तों के साथी तो एक ही होते हैं।

0: शांति आराधना र उपहार का लागि समेत प्रयोग गर्न सकिने कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती नेपालको पहिलो ISO सर्टिफाइड अगरबत्ती कम्पनी
1: कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती पवित्र सुवास
2: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सक्नुहुनेछ।

और पूर्वे रास्ते में बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था जो आज ये इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं। जहां जहां श्री रामचंद्र जी के चरण जले जाते हैं, उनके समान इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री राम जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियां भी उनकी बड़ाई करती हैं। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते हैं और सिहाते हैं। पर्वत, वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं।

सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास जा निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सब अपने घर और कामकाज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मग्न हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की ढेरी पाली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ लगे चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर, मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं। कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर वहां नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहां बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा अथवा चाहे सवेरे।

कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं और कोमलवाणी से कहते हैं, हे नाथ, आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया है। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से शिखा तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के वलकल आदि वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित हो रहे हैं। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं। वक्षस्थल, भुजा और नेत्र विशाल हैं और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है।

0: उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन, चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। प्रेम के प्यासे वे गांव के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुर्य की छटा देखकर ऐसे थकित रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरन निस्तब्ध रह जाते हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते सकुचाती हैं, बार बार उनके पांव लगती और सहज ही सीधे सादे कोमल वचन कहती हैं,
1: हे राजकुमारी, हम विनती करती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। हे स्वामिनी, हमारी ढिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गंवारी जानकर बुरा न मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही परम सुंदर हैं। पन्ने और सुवर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं।
0: मास पारायण 16वां विश्राम, नवान्न पारायण 4था विश्राम।

हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों काम देवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं? उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं और मन ही मन मुस्कुराई। उत्तम वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर के संकोच से सकुचा रही हैं। हिरन के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल की सी वाणी वाली सीता जी सकुचाकर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार कर भौहें टेढ़ी करके खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। ये जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हों। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों में पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिनी बनी रहो।

और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा न छोड़ना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करते हैं जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटें और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कहकर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदिनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। ये सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में जल भर आया। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीन लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया।

लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन दैव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। वह विधाता बिल्कुल निरंकुश, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया। उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है, तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते ही नंगे पैर रास्तों में चल रहे हैं, तब विधाता ने अनेकों सवारियां व्यर्थ ही रची। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं, तब विधाता सुंदर पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया, तब उज्जवल महलों को बना बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार ने भांति भांति के गहने और कपड़े वृथा ही बनाए।

0: सकिने कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती नेपालको पहिलो आईएसओ सर्टिफाइड अगरबत्ती कम्पनी।
1: कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती पवित्र सुवास।
2: तपाईँ अहिले सुनिरहनु भएको छ एफएम अध्यात्म ज्योति।
3: जो ये कंद मूल फल खाते हैं तो जगत की अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही है। कोई ये कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं है। हमारे कानों नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहां तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहां तक 14 लोकों में ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष और स्त्री कहां है? कहीं भी नहीं। इसी से सिद्ध है कि विधाता के 14 लोकों से अलग हैं और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन्हें देखकर विधाता का मन मुग्ध हो गया, तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया परंतु कोई उसकी अटकल में नहीं आए। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। कोई कहता, हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। इस प्रकार प्रिय वचन कह कह कर सब नेत्रों में प्रेमाशुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे।

स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी सोह रही हो अर्थात दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। इनके कोमल और लाल लाल तलवों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्ते को पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी इन्हें अपनी आंखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे श्री सीताराम जी को नहीं देख सके। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहां गए होंगे, और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। गर्भवती प्रसूदा आदि अबला स्त्रियां बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहां जहां श्री रामचंद्र

सूर्य कुल रूपी कुमुदिनी को प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी अर्थात दशरथ कैकई को दोष लगाते हैं। कोई कहता है राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वह नगर धन्य है जहां से ये आए हैं। वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है और वही स्थान धन्य है जहां जहां ये जाते हैं। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई। रघुकुल रूपी कमल को खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं।

आगे श्री राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं, तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूं, मानो वसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति अर्थात कामदेव की स्त्री शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोज कर उपमा कहता हूं कि मानो बुध अर्थात चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी अर्थात चंद्रमा की स्त्री सोह रही हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी डरती हुई मार्ग में चल रही हैं, और लक्ष्मण जी सीता जी और रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं, अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा उन्होंने भव का अगम मार्ग अर्थात जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया।

आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही आ बसें, तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंदमूल फल खाकर रात भर वहां रहकर प्रातः काल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। सुंदर वन तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहां सुंदर पर्वत वन और पवित्र जल है, सरोवरों में कमल और वनों के वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भौंरे

चंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहां सुंदर पर्वत, वन और पवित्र जल है। सरोवरों में कमल और वनों के वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भौंरे